मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 32 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह सवेरे हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। आप सभी को मेरा यानी आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का नमस्ते लखनऊ में। दोस्तों, आज सुबह का स्वागत किया है बारिश की बूंदों ने, तो आइए हम भी अपने दिन की एक खूबसूरत और सकारात्मक शुरुआत करें। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी हम सबको देता है। दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने

देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। सफर चल रहा है नमस्ते लखनऊ का। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गन्ने की फसल में कृषि रक्षा कार्य। इस विषय पर डॉक्टर दिनेश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से परियोजना समन्वयक गन्ना डॉक्टर दिनेश सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां गन्ने की फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
3: नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये एक दो महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है। बावक फसल ही लें और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें तथा उसकी 0.1% के घोल बना के वेबस्टिन नामक एक फफूद आती है कार्बनडाइजिम
2: जी, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के,
3: 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20 मिनट, आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है, और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है।
2: इसके अलावा पक्का बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब,
3: जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पक्का बोइंग आ रहा है और कंडुआ रोग आ रहा है। ये चार बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।
2: इनकी पहचान क्या है?
3: जी जी, देखिए लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती हैं जैसे नीचे से काट के चिपका दिया गया हो। लेकिन जब पक्का बोइंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरिमाहीनता कहते हैं, और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है इसलिए पत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा एक फफूद निकलता है जो रोग को फैलाने में काम करते हैं। वो फफूद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बयाना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बनडाइजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी।
2: सब इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन।

0: में किसान भाई बहन,
1: निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है,
0: 1 ml प्रति लीटर पानी
1: जी जी का छिड़काव कर दें। उसके छिड़काव से आपका कब्जियत पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा फोन नंबर आप अवश्य नोट करें, 94-52-65-53-52, 9452655352, 94-52-65-53-52।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप जो है बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं।
0: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिनेश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन का आरंभ अगर अच्छे विचारों के साथ हो तो दिन और भी लाभकारी बन जाता है। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार, आत्मबोध।
3: आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ, इस तथ्य को समझ लेने के बाद ये अनुभूति होने लगती है कि उपकरण, औजार और पदार्थों का उपयोग, उपभोग, संबंध स्नेह की सीमा कितनी रहनी चाहिए। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शरीर हूँ इसके रूप में हमारी अंतः मान्यता देती है। सो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जुड़ी हुई परिवर्तनीय प्रतिक्रियाएं देह के साथ जुड़ी रहती हैं। आत्मतौर पर हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सुखी और संपन्न समझें। इसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दूसरे लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी की अमीरी गरीबी का मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर ही केंद्रित है और ये मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है जिसे तात्विक दृष्टि से पूर्णतया निरर्थक कहा जा सके। आत्मबोध न होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, चेष्टाएं, योजनाएं, गतिविधियां एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती हैं। जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे उनको भी गलत दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। मैं क्या हूँ, इसका उत्तर अब तक के चले आ रहे धैर्य वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं वरन तत्व चिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हम प्रभावित न हों। निस्संदेह वातावरण अंधकार भरा है। आत्मबोध की पहली सीढ़ी ये है कि लोक चिंतन की अवांछनीयता को समझा जाए और अपनी अब तक के धैर्य पर चलती हुई मान्यताओं के औचित्य को अस्वीकार किया जाए। व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम पवित्र अविनाशी अंश समझता है और आत्मा के रूप में अनुभव करता है तो शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है। उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं और गतिविधि

0: विधियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। उपलब्ध संपत्ति का सदुपयोग सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। भगवान के उद्यान के रूप में संबंधित परिवार को कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सींचना सहेजना बहुत सही है। मोहग्रस्त मनुष्य अपने कुटुंबियों की सुविधा संपदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाता है और घर वालों की इच्छा और खुशी के लिए वो व्यवस्था भी जुटाता है जो न आवश्यक है न उपयुक्त। मोहग्रस्त के पास विवेक रह ही नहीं सकता। आत्मबोध एक श्रद्धा है, आत्म साक्षात्कार एक दर्शन है, जिसे सच्चाई के साथ हृदयंगम किया जाए तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता वरन क्रियाकलाप भी बदल जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, विषय था आत्मबोध, वाचन स्वर था शीला मिश्रा का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज है मंगलवार का पावन दिन और ये दिन हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। तो आइए आज की आराधना आरंभ करते हैं उनके चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि हनुमान जी तो वो नाम है जिनसे भय मिटता है, दुख दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करें आज की आराधना।

जय श्री हनुमान। श्रोताओं, सावन का पावन मास चल रहा है और कहते हैं इस मास में भोलेनाथ की आराधना से मन को शांति और हृदय को शक्ति मिलती है। तो आइए शिव भक्ति के इस पावन घड़ी में हम भी अपने मन की सारी चिंताएं शिव चरणों में अर्पित करें और डूब जाएं उनकी भक्ति भजन में।

श्रोताओं, कई बार हमारा अपना ही मन हमें समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि भटकाव छोड़ो और प्रभु की शरण में आ जाओ। जब हृदय स्वयं से संवाद करता है तो वह सबसे सच्ची आवाज होती है। तो आइए हम भी भटकाव की राह छोड़े और हरि नाम जपना आरंभ करें, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण है।

सत्य है श्रोताओं, हरि नाम में ही जीवन का सार है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मर्यादा, करुणा और सत्य के प्रतीक प्रभु श्री राम का स्मरण मन को शांति और जीवन को सही राह देता है, और ये सब प्रभु श्री राम की ही माया है। आइए हम भी चलें उनके चरणों में नतमस्तक होने और सुने ये पावन भजन।

0: तुम्हारा।
1: जी हाँ श्रोताओ, माया भी राम की है और ये जीवन भी राम का है। जहाँ श्री राम का नाम होता है वहाँ हृदय को अलग ही सुकून मिलता है। आइए इसी भक्ति भाव के साथ सुने ये भजन।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 259।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवीं भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल, एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।

0: विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवद् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचलप्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नमस्ते लखनऊ में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, आज की चर्चा में नीना सोनकर से सुनिए जानकारी मन का भूखा या लालसा यानी क्रेविंग के छिपे इशारे के विषय में।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय थोड़ा निजी है, थोड़ा व्यवहारिक और थोड़ा सा हमारे मन और शरीर के उस अदृश्य संवाद से जुड़ा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, दिन भर कुछ भी न खाने के बाद भी कुछ हल्का सा खाकर पेट भर जाता है, लेकिन किसी दिन पेट भरा होता है फिर भी दिल कहता है कुछ चटपटा मिल जाए, कोई मीठा खा लूं, एक प्लेट समोसा मिल जाए तो क्या बात हो। तो सवाल उठता है, क्या ये भूख सच में शरीर की है या ये मन का बहकाव है। आज हम बात करेंगे उस तलब की, उस इच्छा की जिसे अंग्रेजी में क्रेविंग कहा जाता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या फिर इतना गंभीरता से लेते हैं कि उसके गुलाम बन जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं मन का भूखा या तन का भूखा, आखिर इस क्रेविंग के पीछे छिपा इशारा क्या है। भूख एक सीधा साधा शब्द, पर ये शब्द सिर्फ पेट से नहीं जुड़ा होता बल्कि भावनाओं, आदतों और हमारी दिनचर्या से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब हम सच में भूखे होते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और ऐसे में सामान्य संतुलित खाना जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी हमें संतुष्टि देता है। लेकिन जब अचानक हमें कुछ खास खाने की तीव्र इच्छा होती है, जैसे कि चॉकलेट, तला भुना, आइसक्रीम या कोई फास्ट फूड, तो समझ लीजिए ये क्रेविंग है। ये संकेत है कि कुछ और चल रहा है, शायद हमारे मन में, शायद हमारी आदतों में या शायद शरीर के भीतर किसी रासायनिक असंतुलन में। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पूरे दिन ठीक ठाक भोजन कर चुके हैं फिर भी शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मन करता है कुछ मसालेदार खा लिया जाए। अब सोचिए, क्या ये शरीर की जरूरत है या ये दिन भर की थकान, मानसिक दबाव या दिन के अंत में खुद को तसल्ली देने का तरीका बन चुका है। क्रेविंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, नींद की कमी, तनाव, भावनात्मक अस्थिरता या डिहाइड्रेशन। ये सभी मस्तिष्क में ऐसे रसायनों को प्रभावित करते हैं जो भूख और तृप्ति को नियंत्रित करते हैं। जब हम थके होते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग ऐसे पदार्थों की ओर आकर्षित होता है जो तुरंत ऊर्जा दें, जैसे चीनी और कार्बोहाइड्रेट, इसलिए चॉकलेट या बिस्किट जैसे विकल्प लुभाते हैं। एक और रोचक बात यह है कि कई बार क्रेविंग किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकती है। मान लीजिए बार बार चॉकलेट की इच्छा शरीर में मैग्नीशियम की कमी का संकेत दे सकती है या तले भुने की तलब ये दर्शा सकती है कि शरीर को फैट की जरूरत है, लेकिन हम उसे अस्वस्थ माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इसी तरह खट्टे स्वाद की ओर झुकाव कभी कभी शरीर के विटामिन सी की आवश्यकता को भी दर्शाता है। हमारे सामाजिक परिवेश और बचपन की स्मृतियाँ भी इसमें भूमिका निभाती हैं। सोचिए, जब हम बीमार होते थे तो माँ हल्की खिचड़ी बनाती थी, अब जब भी मन बेचैन होता है वही खिचड़ी हमें आराम देती है, न सिर्फ शरीर को बल्कि भावनाओं को भी।

कई बार भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या हर क्रेविंग पर काबू पाना जरूरी है? नहीं, कभी कभी मन का कहना भी चाहिए। अगर महीने में एक दिन आपका मन कहता है कि एक गुलाब जामुन खा लें, तो खाइए। लेकिन अगर हर रोज आपके दिन की शुरुआत ही मीठे के बिना अधूरी लगती है, या हर शाम पकौड़े की थाली लिए बिना चैन नहीं आता, तो ये आदत धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकती है। तो प्यारे श्रोताओं, अगली बार जब मीठे की, नमकीन की या चटपटे की तीव्र तलब उठे, तो जरा रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, मन का भूखा हूँ या तन का? हो सकता है जवाब अंदर से आए, और जवाब के साथ ही आए संतुलन की दिशा में एक छोटा सा कदम। इसी सोच

0: आए संतुलन की दिशा में एक छोटा सा कदम। इसी सोच के साथ मैं नीना सोनकर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे जानकारी मन का भूखा या लालसा यानी क्रेविंग के छिपे इशारे। इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं आज रात्रि 8 बजे से सुनिएगा संसद समीक्षा। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा तकरीर। मौजू होगा जंगे आजादी में माहे अगस्त की अहमियत। मुकर्रर होंगे डॉक्टर मिसबाह अहमद सिद्दीकी। साथ ही डॉक्टर अशफाक जैदी से हुब्बुल वतनी पर कलाम भी आप समाप्त फरमा सकेंगे। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे वंदना शुक्ला के गाए अवधि लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:45 से। बहने सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। आज इस कार्यक्रम में बहने डॉक्टर अनुपमा शांडिले से ऋचा सिंह की भेंटवार्ता सुन सकेंगी। बातचीत का विषय रहेगा नवीन रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार योजना। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 से सुनिएगा कार्यक्रम नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे कार्यक्रम लोकायतन के साथ। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर कृष्ण मणि चतुर्वेदी की वार्ता लोक गीतों में सावन। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज खरीफ फसलों में पोटास और गंधक प्रबंधन इस विषय पर डॉक्टर काशीनाथ तिवारी से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। आज रात्रि 8:15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अनुप्रिया चौधरी के गाए भजन। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। समय होगा रात्रि 9:30। इसके साथ ही आज प्रातः 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आज सुबह। और अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 से सुनिएगा अपना मनपसंद कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा खुदीराम बोस बलिदान दिवस। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। दोस्तों, किसी देश की आजादी की कहानी केवल बड़े आंदोलनों, बड़ी सभाओं या बड़े नेताओं की कहानी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे असंख्य ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का साहस दिखाया और अपना जीवन तक अपने देश के नाम कर दिया। आज विविधा में बात ऐसे ही एक युवा की, जिसने बहुत कम उम्र में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका नाम था खुदीराम बोस। आज यानी 11 अगस्त को हम सब उनके बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। आज हम बात करेंगे उस बलिदान की, जिसने उस समय के युवाओं के मन में स्वतंत्रता की भावना को और ज्यादा मजबूत किया। दोस्तों, बात 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों की है, जब भारत में स्वतंत्रता की भावना बहुत तेजी से मजबूत हो रही थी। उस समय देश की आजादी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। कुछ लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से बदलाव की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ युवा क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता अपना रहे थे। खुदीराम बोस का नाम भी इसी क्रांतिकारी धारा से जुड़ा। उनका योगदान केवल इस बात में नहीं देखा जाता कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बात में भी देखा जाता है कि उनके बलिदान ने उस समय के युवाओं की सोच को किस तरह से प्रभावित किया था। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर की एक क्रांतिकारी घटना के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार किए गए थे। उन पर मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड भी दिया गया। फिर आया 11 अगस्त 1908 का दिन। मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। आप जानते हैं, उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष 8 महीने और 11 दिन थी। कल्पना कीजिए, जिस उम्र में आज कोई युवा अपने भविष्य की, अपनी पढ़ाई की, नौकरी की और अपने सपनों के बारे में सोचता है, उस उम्र में खुदीराम बोस ने अपने जीवन का अंत देश की स्वतंत्रता और उसकी सफलता के उद्देश्य से करना स्वीकार किया।
1: कर चले हम पिता जान तन।

दोस्तों, एक युवा का बलिदान केवल एक घटना बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो युवा चेतना का प्रतीक बन गया। खुदीराम बोस ने अपने समय के उस विचार को अपनाया जिसमें विदेशी शासन का विरोध और भारत की स्वतंत्रता सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता था। उनका जीवन भले ही बहुत छोटा रहा, लेकिन उनका बलिदान उस दौर की युवा पीढ़ी में ये संदेश छोड़ गया कि देश की स्वतंत्रता के लिए युवा अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभा सकते हैं। उनका नाम युवाओं के बीच साहस, त्याग

और देश प्रेम के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। और शायद यही वजह है कि आज इतने वर्षों के बाद भी जब ये 11 अगस्त का दिन हमारे सामने आता है तो साथ ही खुदीराम बोस का नाम भी हमारे सामने आ जाता है और हमारा सर श्रद्धा और सम्मान के साथ झुक जाता है। तो सर, समय बदल गया, देश बदल गया, हमारी चुनौतियां बदल गई, लेकिन देश के लिए कुछ करने की भावना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने की चुनौती तो नहीं है, लेकिन हमारे सामने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जरूर है। खुदीराम बोस ने अपने समय जो रास्ता चुना वो उनके दौर की परिस्थितियों और उनके विश्वास से जुड़ा था। आज हमारा दायित्व अलग है, लेकिन देश के प्रति समर्पण की भावना आज भी उतनी ही मायने रखती है। कई बार इतिहास में सबसे गहरी छाप वे लोग छोड़ जाते हैं जिनके पास जीवन जीने के लिए बहुत कम वर्ष थे, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो सभी के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। भले ही उनके पास जीवन जीने के लिए बहुत कम वर्ष थे, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए अटूट विश्वास था। आज 11 अगस्त को खुदीराम बोस को याद करते हुए उनके बलिदान को केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रखें, बल्कि उनके पीछे छिपी देश की प्रतिनिष्ठा, साहस और समर्पण की भावना को भी समझें, क्योंकि देश के लिए जीवन का त्याग करना बहुत बड़ा, बहुत महान त्याग है। दोस्तों, ये भी कहना चाहेंगे कि देश को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा समर्पित करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें, अपने समाज के प्रति संवेदनशील रहें और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो शायद यही उन सभी बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खुदीराम बोस का जीवन छोटा भले था, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। आज उनके शहीदी दिवस पर हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं। अब मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को विविधा के आज के सफर से दीजिए अनुमति। फिर होगी किसी रोज मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया।
1: राज्यसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद कल लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: संसद ने कल ही बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में प्रदेश के खिलाड़ी गुलवीर सिंह और अस्मिता डे भी शामिल हैं। इस अवसर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं, बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
5: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस में

0: सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
1: वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
2: जी सर, बहुत
1: कैसा बना है स्टेडियम?
2: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रदेश से जुड़ी अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और कुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है।
3: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
0: मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
3: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में तिरंगा लहराया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
4: मुख्यमंत्री गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में STP के समीप स्थित मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने OTS के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के कुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात, कहा

0: आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का नमस्ते लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: दोस्तों, सुबह सुबह बारिश की बूंदों ने स्वागत किया है आज, और अब 7:32 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और हम भी स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कार्यक्रम आज सुबह में। हम स्वागत करते हैं, हम कौन, मैं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, और आज इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ है,
1: मैं हूँ आपके साथ निधि श्रीवास्तव। तो स्वीकार कीजिए मेरा और रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। तो रिंकी, तो भाई हम दोनों ने अपना इंट्रो तो दे ही दिया, और अपने सभी श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि सुप्रभात, नमस्कार। आपका आज का दिन जो है वो आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, अच्छा हो, बहुत खास हो, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है जीने की। क्या कहते हैं रिंकी?
0: बिल्कुल सही। और देखिए, श्रोताओं को तो इतनी मुबारकबाद आपने दे दी, और आप हमसे पूछ रही थी आप कैसी है, वो बात आपने आधी छोड़ दी।
1: नहीं नहीं रिंकी, बिल्कुल आप बताइए कैसी हो, और कैसा रहा आज का मौसम, जो आप जब आप आ रही होंगी तो कैसा था मौसम?
0: बहुत खूबसूरत मौसम था, और जैसे हम पिछली बार मिले थे ना,
1: हाँ।
0: तो खूब बारिश हुई थी,
1: हाँ।
0: आज भी कुछ कुछ भगवान का मूड वैसा ही था, हाँ। लेकिन आज कुछ नरम था, और हमें क्योंकि अपने दोस्तों से मिलना होता है तो हम हर हाल में पहुंच जाते हैं आपके पास, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आज सुबह। तो दोस्तों, अगर चाय अभी हाथ में आपके नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम हैं आज की सुबह को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए, क्योंकि निधि सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती बल्कि एक नया मौका लेकर आती है कि हम कल जो नहीं कर पाए वो आज तो जरूर कर ले, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो भाई, जो अच्छा है और जो थोड़ा और बेहतर हो सकता है उसे आज जरूर कीजिए, और चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। खूबसूरत बातचीत तो हमारी शुरू ही हो चुकी है खूबसूरत से सुविचार के साथ। तो बता दे आज का सुविचार क्या कहता है।
1: हाँ रिंकी, बताइए क्या कुछ आज का सुविचार कह रहे हैं।
0: भाई देखिए, आज का सुविचार कहता है कि हर दिन को बदलना जरूरी नहीं है, बस हर दिन में कुछ अच्छा जोड़ना जरूरी है, और आगे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी अगर आप ये हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ जोड़ते रहे अपने हर दिन में।
1: क्या मतलब, कहने का आपका तात्पर्य ये है रिंकी कि हर दिन एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल, जीवन में बड़ा बदलाव लाना है लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तो भाई, शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन आज किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी की मदद

0: कर देना, अपना अधूरा काम पूरा कर लेना और कुछ नया सीख लेना।
1: मतलब हर दिन जी हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहना।
0: जी हाँ, और खुद से किया हुआ एक छोटा सा कोई वादा भी, कई बार ना हम अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार, हम ये काम बाद में कर लेंगे, या हमें ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ठीक है कोई और ले गया। लेकिन हम अपने दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है,
1: बेहद जरूरी है,
0: क्योंकि अपनी जिंदगी तो हम खुद ही जीते हैं निधि, हमारी जिंदगी कोई और नहीं जी सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना ये भी हमारे ही हाथों में है, है ना?
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपने लिए भी टाइम निकालना बेहद जरूरी है।
0: जी हाँ, तो भाई सावन आ चुका है और इस बार सावन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बारिश देर से शुरू हुई, लेकिन सावन आया है तो फिर झूम के आया है। और बातें और भी जानकारी और भी गाना एक सुनाते हैं अपने श्रोताओं को। और आ गया, ये जरूरी बात है, ये अच्छी बात है, आपने देर आए दुरुस्त आए लेकिन झूम के आए।

0: तो निधि, सावन झूम के आ गया और हमने अपने श्रोताओं को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आया सावन झूम के से यह खूबसूरत सा गीत भी सुना दिया।
1: बिल्कुल,
0: तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़े।
1: बिल्कुल रिंकी, इंतजार कर रहे हैं हम सभी।
0: तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज निधि क्या बताने वाली है, क्या सुनाने वाली है, और जैसे अपनी चहकती हुई आवाज के साथ हम सबको दोबारा से जगा देती है। एक तो हम सुबह जगते हैं और उसके बाद जब निधि साथ में होती है ना तो हम थोड़ा ज्यादा जग जाते हैं। तो आज अभी तक निधि का वो एक मिसिंग पार्ट था, तो हम इंतजार कर रहे हैं, निधि थोड़ा जगाइए तो सही। तो भाई निधि हमें जगाएंगी और जगाती ही रहेंगी क्योंकि ढेर सारी चाय लेकर के आती है ये हमारे लिए। चाय पिएंगे हम
1: जगाती ही रहेंगे। आपको प्रोग्राम करना है सिर्फ
0: जाग जाग के प्रोग्राम करेंगे ना। तो भाई देखिए, कार्यक्रम में हम हमेशा इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, है ना।
1: बिल्कुल,
0: यानी इंटरटेनमेंट तो होता ही है। जो भी हमने अपने श्रोताओं को गीत सुनाया,
1: मतलब
0: इन्फॉर्मेशन की बारी आती है। और जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि जहाँ साहस होता है, संकल्प होता है और सपनों को पूरा करने की जो कोशिश होती है वो कामयाब होती है, तो जीवन अपना ही एक अलग रंग ले लेता है। तो एक ऐसी ही पर्वतारोही है तुलिका रानी जी, उनसे बातचीत करने और उन्हें जानने का हमें मौका मिला। तो आइए आपको और अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं उनसे ये विशेष बातचीत।
2: श्रोताओं,

0: आकाश छू लेने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन कुछ लोग अपने साहस, अनुशासन और अदम्य इच्छा शक्ति से सचमुच आसमान को छू लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व मौजूद है, जिन्होंने न केवल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में देश की सेवा की, बल्कि पर्वतारोहण की दुनिया में भी इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला और एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला। हम बात कर रहे हैं वीरता, संकल्प और नारी शक्ति की मिसाल तुलिका रानी जी की। तुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले अपने बचपन और उस वातावरण के बारे में हमें कुछ बताइए जिसने आपके भीतर इतने बड़े सपने देखने का साहस पैदा किया।
1: जी, मैं जब छोटी थी तब से ही प्रकृति के बहुत करीब रही हूँ और मुझे आकाश देखना हमेशा से पसंद रहा है। उसमें बादलों को देखना, चांद देखना, साथ ही पेड़ों को बढ़ते हुए देखना, एक छोटे पौधे से किस तरह पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर बहुत सारे पक्षियों को और इंसानों को भी वह फल फूल प्रदान करता है। तो हमेशा से मुझे दिन रात, सूर्यास्त, सूर्योदय ये सब देखना पसंद रहा है और प्रकृति से ही मुझे प्रेरणा मिली कि इंसान के जीवन के रूप में भी हमें अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस से भी आगे जाने की सोचनी चाहिए और अपने अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं, जितनी भी क्षमता एक इंसान के रूप में ईश्वर ने हमें दी है, उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: जैसे कि आपने भारतीय वायुसेना में भी स्क्वाड्रन लीडर के पद पर काम किया है, भारतीय वायुसेना में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उस सफर का अनुभव कैसा रहा?
1: जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने एनसीसी आर्मी विंग से ग्रेजुएशन किया, टी सर्टिफिकेट, और एनसीसी करते हुए ही मुझे इस बात का भी आभास हुआ कि मेरे व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण हैं और साथ ही टीम वर्क के भी गुण हैं और मुझे हमेशा से बाहर जाना, आउटगोइंग थी मैं हमेशा, तो तरह तरह के लोगों से मिलना, विविध तरह के संस्कृति के लोगों से मिलना बहुत पसंद आता था। एनसीसी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि हम जब अपने कैंप करने कहीं बाहर जाते थे तो मैंने भी, एक आर्मी ऑफिसर थी लेडी, हफ्ते पहले कैंप में मैंने उनको देखा उनकी यूनिफॉर्म में, तो मुझे भी लगा कि ये काम मुझे भी करना चाहिए। और इसी तरीके से फिर मैंने भारतीय वायुसेना का एग्जाम दिया ग्रेजुएशन के बाद और पहली बार में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली कि मैं बाकी बच्चों को भी कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और उनके पेरेंट्स को भी कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ अनोखी प्रतिभा होती है या उसके व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं और उन गुणों की पहचान हमें बचपन से करने की कोशिश करनी चाहिए और उसी क्षेत्र में उस बच्चे का आगे करियर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे मुझे लगा कि मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, नई नई जगहों पर जाना, बहुत से लोगों से बात करना, टीम वर्क करना, नेतृत्व करना, तो मुझे लगा कि आर्म्ड फोर्सेस, जो फौज है, हमारी सेनाएं हैं, वो मेरे करियर के हिसाब से, मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से सही करियर होंगी। तो इस तरीके से फिर मैंने वहां जाने का सोचा।
0: हम जानते हैं कि आप यूपी से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भी पहली भारतीय महिला है, तो पर्वतारोहण जैसा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र कैसे चुना आपने?
1: जी, जब मैं फौज में ही थी तो मुझे लगा कि 2 साल के अंतर्गत ही कि मैं कुछ और भी करना चाहती थी और क्योंकि प्रकृति से प्रेम हमेशा से रहा, तो मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया 2009 में दार्जिलिंग से। फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि भारतीय वायुसेना ने एक महिला अधिकारियों की टीम बनाने का निर्णय लिया जो कि माउंट एवरेस्ट पर एक्सपेडिशन करें और मैंने उसमें वॉलंटियर कर दिया और उसके साथ 2 साल की हमारी ट्रेनिंग की गई अलग अलग पहाड़ों पर, हिमालय में, लद्दाख में और उत्तराखंड में, सियाचिन ग्लेशियर में भी हमें ले जाया गया। तो 2 साल हमारी कड़ी कड़ी मेहनत से तैयारी की गई। फिर 2011 में माउंट एवरेस्ट पर भारतीय वायुसेना की टीम का मैं हिस्सा रही, तो सेना के में रहने की वजह से भी मेरा माउंटेनियरिंग की तरफ रुख हुआ और मैं भारतीय वायुसेना को भी इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी कि वहां पे एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ, बहुत मौके मिलते हैं अधिकारियों को भी और जो बिलो अधिकारी लेवल लोग हैं उन लोगों को भी। फिर 2012 में मैंने खुद की एवरेस्ट एक्सपेडिशन भी की जिसमें कि मैंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी पर आरोहण किया और मुझे सौभाग्य रहा कि अपने देश का झंडा लेकर मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 26 मई 2012 को खड़ी हो सकी। इसके बाद मैंने लगातार और पर्वतारोहण अभियान जारी रखे और अभी तक 26 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान देश विदेश में हो चुके हैं।
0: और हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी कितनी कठिन होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से आपने खुद को कैसे तैयार किया इसके लिए?
1: ये तो हम जान ही सकते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है,

0: इंसान का शरीर वहाँ रहने के लिए नहीं बना है, तो ऑब्वियसली शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर तैयारी करनी होती है इतने बड़े चैलेंज के लिए। तो मैंने 3 साल तक बहुत गहन फिजिकल ट्रेनिंग की इसके लिए। मैं 20 किलोमीटर अल्टरनेट डेज पे दौड़ती थी, हर दूसरे दिन 20 किलोमीटर दौड़ती थी और अपने पैरों में 1.5 किलो के वेट बांधती थी और अपने कमर पर भी बैकपैक लेकर दौड़ती थी और लगातार मैं सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास भी करती रहती थी। तो जितना भी टाइम मिलता था वो अपने पूरी फिजिकल ट्रेनिंग पर लगा देती थी और उसके साथ साथ अपने दिमाग में मैं उसे विजुअलाइज करती थी कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हूँ। ये जो हमारे माइंड में पावर होती है वो बहुत बड़ी ताकत है एक हमारे पास, इंसान के पास, और उसका हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी लक्ष्य की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं तैयारी के, उसके साथ साथ हमें अपने दिमाग को उनके बीच में आने वाली चुनौतियों के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्योंकि कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं होती है, चाहे वो हिमालय चढ़ना हो या फिर कोई एग्जाम क्लियर करना हो या फिर कोई एक न्यूज रिपोर्टिंग करना हो, किसी भी क्षेत्र में काम हमेशा हिमालय जैसा बड़ा लगता है, लेकिन हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ट्रेनिंग करनी चाहिए रोज रोज। तो अगर आप एक फाइनल डे पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो उससे 1-2 साल पहले हर दिन को फाइनल डे की तरह फेस करें और लगातार उस दिन को ध्यान में रखते हुए थोड़े लंबे समय तक उसकी तैयारी करते रहें, तो आपका बॉडी और आपका माइंड, आपकी सोल सब उसकी तरफ ही एकाग्रत हो जाएंगे और उसकी तरफ ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से ट्रेनिंग की माउंट एवरेस्ट के लिए और अपने बाकी पहाड़ों के लिए भी।
1: देशभक्ति का जज्बा हम सभी के अंदर होता है और जब भी हम अपना तिरंगा देखते हैं तो ये थोड़ा और बढ़ जाता है, और क्योंकि आप भारतीय सेना में थी तो देशभक्ति का जज्बा तो आपके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा था। जब आपने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया तो उस समय आपका अनुभव, आपके मन के भाव कैसे थे?
0: तो मैं खड़े होकर वहाँ, तो चोटी के ऊपर तो ईश्वर ही है और उसके नीचे आपको बिल्कुल अथाह जितनी गहराई दिखती है वहाँ तक पहाड़ पहाड़ और बादल दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत ही सुंदर नजारा वहां से होता है जिसकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता है। और उसके साथ साथ एक कृतज्ञता का भाव मेरे मन में सबसे पहले आया कि ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं जिंदा रहते हुए उस चोटी तक पहुंच सकी, क्योंकि बहुत जोखिम भरा काम है और हर साल माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है इस प्रयास में। तो मैंने पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे उन्होंने जीवित रखते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया, साथ ही वो सभी लोग मेरे साथ, मेरे शेरपा थे पेमा तेंजिंग और पेमा, तो मैंने उनका भी धन्यवाद किया, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने दोस्तों का, शुभचिंतकों का, अपने मन में सबको याद किया और उन लोगों का भी जो आलोचक होते हैं कभी कभी, उनके जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो भी हमें ऊर्जा से भरते हैं, तो उसको भी हम पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चैनलाइज कर सकते हैं, ये मुझे लगा। और उसमें ये भी था कि बहुत थकान होती है क्योंकि आप पूरी रात चढ़ के वहां पहुंचे हैं, 11.5 घंटे मुझे रात भर चढ़ाई करके पहुंची थी, बहुत ज्यादा खतरे वाला रास्ता भी था, सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। और फिर ये भी लगा कि अब सुरक्षित नीचे भी पहुंचना है, तो पूरा फोकस अपने काम पर था और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव मन में था, ऐसी कुछ फीलिंग रही। देश के प्रति जब झंडा लेकर खड़े हुए तो ऑब्वियसली एक बहुत गर्व की बात है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बने जो अपने देश का झंडा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाकर खड़े होने में सक्षम हो सके, तो बहुत ही गर्व और बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा ये रहा, कृतज्ञता वाला।
1: आपने एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर भी फतह हासिल की है, वहाँ तिरंगा फहराने का अनुभव एवरेस्ट से कितना अलग रहा आपके लिए?
0: जी वो क्योंकि ज्वालामुखी है तो इसलिए उसकी टेरेन थोड़ी डिफरेंट है, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं हिमालय से माउंट एवरेस्ट से, और ज्वालामुखी होने के नाते वहाँ जमीन से सल्फर निकलता रहता है और हवा में सल्फर मिलने के कारण सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है नेचुरली, लेकिन अगर उसमें सल्फर भी मिली हो फिर और ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कठिनाई उसकी वजह से और बढ़ गई क्योंकि हवा में सल्फर भी मिली हुई थी, वो थोड़ा चैलेंजिंग इस वजह से बन गया। लेकिन हम बड़ा अच्छा अनुभव रहा क्योंकि 56 माउंटेनियर्स थे कई सारे देशों के और भारत से मैं इकलौती अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण था वह, और काफी अच्छा अनुभव रहा वहाँ ईरान में ज्वालामुखी पर चढ़ने का।
1: हमारी जो बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनके लिए कि महिला होने के नाते क्या इस जो आपके ये सफर रहे, जो चुनौतियाँ आपने ली एवरेस्ट की हो या भारतीय सेना में जाने के लिए हो या ज्वालामुखी पर फतह हासिल करने की हो, महिला होने के नाते आपको कुछ अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: महिला पर्वतारोही के रूप में सबसे ज्यादा जो चुनौती है वह तो समाज के एटीट्यूड को लेकर ही आती है कि

0: पहली बात तो ये पूछा जाता है कि एक महिला के रूप में आपको इस सब काम करने की आवश्यकता ही क्यों है। काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं, हालांकि ये सोच बदल रही है और आज जब सक्सेसफुल हो जाती हैं बेटियां तो काफी लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, सराहना करते हैं और बाकी लोगों के लिए भी वो एक मार्गदर्शन बन जाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो मुझे लगता है वही है कि महिलाओं को घर के जो कार्यकाज हैं उसके बाहर भी उनकी प्रतिभा को मौका मिले, ये देखने की और इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। और पर्वतारोहण क्योंकि एक बहुत अनकन्वेंशनल क्षेत्र है तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले तो आपको समाज की इन सब सोच से बाहर और ऊपर निकलना पड़ता है। और दूसरा है कि जो फिजिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है पहाड़ चढ़ना, बहुत मुश्किल कठिन काम है शारीरिक रूप से, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, दोनों के लिए। तो महिलाओं को जो अपनी शारीरिक क्षमता है उसको बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ता है और उसके साथ साथ मानसिक रूप से और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। हालांकि मैं फौज से थी, पहले से ही वहां अधिकारी थी, तो ये दोनों ही चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ ये है कि आपको जो आपके खर्चे हैं वो आपको चलाने हैं, जो इसमें बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ये स्पेशल स्पोर्ट है, तो इसमें खर्चे और इसकी फंडिंग की भी आपको थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, पर मुझे लगता है कि उसके बावजूद जब आप इतना एक बड़ा काम कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल अचीवमेंट वाले व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि पूरे समाज के लिए जो बेटियां हैं उनके लिए रास्ते खोलने का भी आप एक माध्यम बन जाते हैं। तो ये सब सोचकर इतने बड़े काम को अंजाम देना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसे एग्जीक्यूट करना अपने आप में वर्थ है।
1: तुलिका जी, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें और खासकर बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपने मन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप पूरी मेहनत से, पूरी क्षमता से उसके साथ लगे रहिए। कोई भी कार्य एकदम से संभव नहीं होता है, उसमें समय लगता है और वो जो समय आपकी प्रयास का है, जो प्रिपरेशन का है, वो थोड़ा बोरिंग लग सकता है जरूर, लेकिन आप रोज अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, उसके लिए कार्य करिए और जब विपदाएं आए तो उनका सामना करिए। थोड़े समय आपको अगर थोड़ा बुरा लगता है, हताश है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर से नई ऊर्जा से अपने काम में लग जाइए। और दो लाइनें अपनी यहाँ सुरक्षित शेयर करना चाहूंगी।
1: जी बिल्कुल, स्वागत है आपका।
0: जी धन्यवाद। जब लाग लगी तो क्या विपदा, जब लाग लगी तो क्या विपदा, वह सलिल शिला को चीर चला, वह सलिल शिला को चीर चला। जैसे पानी भी बार बार गिरने से पत्थर को चीर सकता है, प्रयास करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
1: जी बहुत बहुत खूबसूरत और शानदार बात कही आपने और वाकई आपका जो ये सफर है ये प्रेरणा स्रोत है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय के लिए आपके जो भी लक्ष्य है उन सबके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं।
2: क्या बात है रिंकी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी को दिलाई। पर्वतारोही तुलिका रानी से जो इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली और जो जिस तरह से उन्होंने मोटिवेशन दिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपके हालात कुछ भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है, तो हर चीज आपके सामने छोटी हो जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो जो मुश्किलें हैं वो आपकी कम होती नजर आती रहेंगी।
3: बिल्कुल सही। और देखिए, हर किसी के पास पंख होते हैं सपनों की उड़ान के, हाँ। लेकिन उसे पहचानने की, उन पंखों को खोलने की जरूरत होती है,
2: हौसला बेहद जरूरी है।
3: बिल्कुल। तो ये बातचीत हमने सुनी और इसकी प्रस्तुति रमनप्रीत सिंह की थी।
2: और इनके इसके पहले आपने बेहद ही खूबसूरत जो गाना सुनवाया था, आया सावन झूम के, तो भाई सावन का महीना चल रहा है, मौसम इतना बेहतरीन हो रखा है, बस ये भी बता दीजिए कि आज कल कैसा रहेगा मौसम?
3: भाई देखिए, मौसम तो बताते हैं हर रोज, हमसे जुड़ते हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानी जी, तो आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं।
4: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
5: जी गुड मॉर्निंग।
4: वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इस मीठी सी सुहानी सी सुबह में हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है?
5: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून ट्रफ थोड़ा सा साउथ यूपी में है, एमपी के आसपास मौजूद है, जिसके वजह से थोड़ा सा इधर बारिश में कमी है। हालांकि बादलों की आवाजाही रह के हल्की

0: बूंदाबांदी का असर आज रहने की संभावना है। कल परसों थोड़ा सा धूप खिला रहेगा, तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। हालांकि बादलों की आवाजाही और हल्की छींटाकशी टाइप का संभावना है। बाकी 2 से 3 दिनों के बाद एक जैसे कि ट्रफ लाइन और शिफ्ट होगा नॉर्थ पोर्शन में, तो कहीं ना कहीं अच्छी वर्षा की संभावना बनेगी। तो 2 से 3 दिनों के बाद अच्छी वर्षा अगले 2-3 दिनों के लिए रहेगी।
1: जी, तो लखनऊ वालों को आज हल्की राहत मिलेगी, लेकिन 2-3 दिनों का इंतजार अभी और करना पड़ेगा अच्छी बारिश के लिए।
0: जी बिल्कुल
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और सुबह सवेरे हमारे श्रोताओं को मौसम संबंधी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: ओके, धन्यवाद।
2: तो निधि, मौसम की जानकारी मिल गई, लेकिन कार्यक्रम में अभी भी बहुत कुछ बाकी है और समय है कि हम इतिहास के पन्नों को भी एक बार पलट लेते हैं।
3: कैसे भूल सकते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जानकारी भी पहुंचाते हैं अपने श्रोताओं तक।
2: जी हाँ, तो आज क्या कुछ हम मनाते हैं और क्या कुछ दिवस आज मनाए जाते हैं, इतिहास क्या कहता है, ये जान लेते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि 1934 में आज ही यानी 11 अगस्त के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास अल्काट्राइज संघीय जेल को खोला गया था।
3: और इसके साथ ही ये भी बता दें कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में इस सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण भी आज ही के दिन दिखाई दिया था। बात करते हैं 1961 की, तो दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर इसको एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था। और इसके साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी है रिंकी,
2: बहुत खास दिन है आज भारत के लिए, क्योंकि 2008 में आज ही के दिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसके साथ ही आज कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज का दिन भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज खुदीराम बोस बलिदान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की शहादत की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है।
3: और इसके साथ ही ये भी बता दिया जाए कि स्टील पैन संगीत वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को सम्मानित करने के लिए भी आज का दिन यानी 11 अगस्त का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम राष्ट्रीय सैलून दिवस की बात करें, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि हर व्यक्ति सुंदर दिखना जरूर चाहता है।
2: जी बिल्कुल,
3: तो भारत में सैलून और ब्यूटी इंडस्ट्रीज की एकता में और उपलब्धियों के सम्मान में आज के दिन को मनाया जाता है। तो ये कुछ खास जो दिन महत्वपूर्ण दिन है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ दिन होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाते हैं, और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनको हमें अपने श्रोताओं तक जागरूक करने के लिए बताना चाहिए।
2: बिल्कुल, और एक और बात कहना चाहेंगे निधि, कि ये जो इतिहास होता है ये हमें हमेशा ये नहीं कहता है कि भाई पीछे ही देखिए, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी समझाने के लिए होता है, क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं, इनसे जो सीख हमें मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, और ये बहुत लाभदायक होता है हम सबके लिए। तो भाई, अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है कि आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे यही कहेंगे कि अगर आज आपका मूड अच्छा ना हो तो खुद पर नाराज मत होइए, क्योंकि हर सुबह एक जैसी नहीं होती है और हर नई सुबह एक पूरा नया दिन लेकर के आती है, जिसमें आप बिल्कुल नए तरीके से नई शुरुआत कर सकते हैं।
3: क्या बात है रिंकी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, बीते कल की जो बातें हुई उसको आप भूलकर नई शुरुआत कीजिए आज के दिन से।
2: जी हाँ, और अपने दिन को खूबसूरत तो बनाइए ही, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। और अब रिंकी और
3: निधि को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी के साथ अब नमस्ते लखनऊ का सफर भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
6: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट

0: जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
0: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में

0: नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सौ.4 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय हुआ है 8:15। तो लीजिए सुनिए नमस्ते।

नमस्ते बरेली, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बदलते मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि मॉनसून

का जो सीज़न है वो चल रहा है और कई तरह से हमें अपनी देखभाल करनी होती है, अपनी हेल्थ की देखभाल करनी होती है। और इसी के साथ उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि 11 अगस्त 2026 है और मौसम की अगर बात करें तो बरेली और आसपास के इलाकों में मौसम काफ़ी मेहरबान रहने वाला है और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं भी चलेंगी। हालांकि उमस से हमें थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी और दोपहर के बाद कुछ हिस्सों में रिमझिम फुहारें और अच्छी बरसात होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से आज सुहाना होने वाला है और इसी सुहाने मौसम में घोलते हैं सुरों की ये मिठास और सुनते हैं ये गाना।

और अगर बात करें तो महादेवपुरम और ग्रेटर बरेली टाउनशिप की, तो बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत रोड और दिल्ली रोड पर शहर की सबसे आधुनिक टाउनशिप महादेवपुरम की तैयारी पूरी कर ली है और बहुत जल्द इसकी औपचारिक लॉन्चिंग भी होने जा रही है। और ऐसे में बरेली के लोगों को बेहद आधुनिक और किफायती दरों पर अपने सपनों का आशियाना भी मिल सकेगा।

और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और समय हुआ है 8:27:47। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉनसून का सीजन चल रहा है और मॉनसून बारिश को लेकर आता है, और बारिश जब आती है तो हमारे शहर की जो सड़कें हैं उस पर भी इसका असर होना लाजमी है। लेकिन अब आपको इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस जो स्थिति है उससे निपटा जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, हमें जलभराव से राहत मिलने वाली है। दरअसल बदायूं रोड पर रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर तो जरूर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस रूट पर बड़ा ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, और ऐसे में भारी बारिश में लोगों को जलभराव और जो कीचड़ की समस्या हो जाती है। लोग जाने से भी कतराते हैं, रास्तों में काफी लेट हो जाते हैं जब उन्हें जहां पहुंचना होता है। ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम से अब उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा, तो है ना ये मानसून के लिए अच्छी खबर।

और बात कर रहे हैं बरेली की कुछ खास खबरों की, तो बरेली शहर में राम गंगा नगर में रामायण वाटिका भी एक काफी अच्छी जगह है जहां पर हम सभी जा सकते हैं। और लेकिन शहर को हरा भरा बनाने के लिए राम गंगा नगर में करीब 33